बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

सुबह की भाग दौड़ अब शायद थोड़ी सी सेटल हो चुकी है। आज रविवार का दिन है पर मीटिंग शीटिंग तो चलती ही रहती है, क्योंकि मीटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ दफ्तर की मीटिंग्स हो या बिजनेस की मीटिंग्स हो। मीटिंग्स तो अपनों के साथ भी होती हैं जब उनके लिए हम वक्त निकाल लेते हैं। तो मीटिंग की शुरुआत शायद हो चुकी हो, कोई अपने काम में लग चुका है और कोई अभी भी सोच रहा है कि आज की टू डू लिस्ट आखिर इतनी लंबी कैसे हो गई। हर हफ्ते ऐसा ही लगता है जब शनिवार या रविवार का दिन आता है और वो देखते ही देखते पलक झपकते कैसे गुजर जाता है ये पता नहीं चलता। लेकिन इन सबके बीच 10 बजे का ये वक्त थोड़ा हमारे नाम भी तो होना चाहिए। तो आइए अगले एक घंटे तक, जी नहीं एक घंटे नहीं, क्योंकि 10:11:05 तो हो रहा है समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में, यानी कि लगभग 49 मिनट्स। थोड़ी सी बातें काम की और थोड़ी बेकाम की भी। तो चलते हैं एक घंटे से थोड़ा कम समय के लिए कुछ फिल्मी बातें, कुछ संगीत, कुछ दिलचस्प किस्से और ऐसी बातें जिनका कोई तय एजेंडा नहीं होता लेकिन जिनसे बातचीत का जो ये सिलसिला है ना वो बरकरार रहता है। मैं हूं देवजानी, सुन रहे हैं आप 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक पर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप।

0: अब जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों और मछुआरों के लिए जारी मौसम संबंधी महत्वपूर्ण चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार आज 20 सितंबर से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से और उससे सटे इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 21 से 25 सितंबर तक पश्चिम बंगाल के तट और बंगाल की खाड़ी के आसपास समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंकों के साथ इसकी गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है। 21 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 22 सितंबर को उत्तर बंगाल की खाड़ी के आसपास हवा की रफ्तार 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों के साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 23 सितंबर को उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के तट के आसपास भी तेज हवाएं चल सकती है। वहीं 23 से 24 सितंबर की शाम तक पश्चिम बंगाल के तट के आसपास हवा की रफ्तार लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। ऐसे में समुद्र में ऊंची लहरें उठने और समुद्र की स्थिति बहुत खराब होने की आशंका रहती है। इसलिए पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 25 सितंबर तक समुद्र में न जाएं। जो मछुआरे पहले से ही समुद्र में हैं, उन्हें 21 सितंबर तक वापस तट पर लौट आने की सलाह दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण कुछ स्थानों पर जल भराव जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी होने वाली ताजा सूचनाओं पर ध्यान दें और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें। और अब एक नजर कोलकाता के मौसम पर। अगले 24 घंटों के लिए कोलकाता में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान लगभग 33 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास होगी। पिछले 24 घंटों में कोलकाता में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 97% थी जबकि न्यूनतम 68%। तो श्रोताओं, मौसम का मिजाज फिलहाल थोड़ा सा बदला हुआ है। खासकर हमारे मछुआरे भाई समुद्र में जाने से पहले मौसम विभाग की चेतावनी जरूर सुने और सुरक्षा को सबसे पहले रखे। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। Non-stop Gupshup 107 FM Rainbow par Non-stop Gupshup Non-stop Gupshup 107 FM Rainbow par FM Rainbow par
2: धिन धिन धा तिन्ना कत्त धा तिन्ना ता न धे।

0: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: दस बजकर 30 मिनट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एक स्पेशल कार्यक्रम के लिए और वापस आएंगे ठीक 5 मिनट बाद। हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: नमस्कार, जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता
2: एंड आई एम दर्पण।
1: अब तक के भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय परफॉर्मेंस में दो मेडल कंफर्म हो चुके हैं। पहली अपडेट में हमने आपको बताया था सुचिका तारियाल MMA सेमीफाइनल के मुकाबले में पहुंच गई है, जहां कम से कम उन्होंने अपने लिए एक कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है और दूसरा पदक ऑफिशियल तौर पर आया है शूटिंग रेंज से।
2: Yes, so that becomes the first official medal that has been confirmed. Of course, Suchika could go on to get into the final, could wield a silver or a bronze. But the first official medal has come from the shooting range, 10-meter air rifle women's team event, where the trio of Elavanil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod have confirmed a silver medal, and India are off the mark on the medals tally. Let us also tell you that out of these three, two shooters have even made it to the final of the individual event, which means Elavanil Valarivan and Sonam Maskar will be in action in the final of the 10 meter air rifle women's individual event final at 11 a.m., which means we could have a couple more medals in the store.
1: और अभी मेडल की उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद स्विमिंग में भी हमारे पास एक मौका है मेडल अर्जित करने का। स्विमिंग में ऋषभ दास फाइनल में एंट्री कर चुके हैं, जहां 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ आज अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगे और इसी के साथ इनके साथ रहेंगे रिजर्व में उत्कर्ष पाटिल, जिनका मुकाबला होगा दोपहर को 2:40 पर। उम्मीद है कि यहां ऋषभ का मेडल आ जाए।
2: Then talking about a medal, where we are thinking that a medal is assured, is cricket. Women's cricket is currently underway. The semi-final match has begun. India are facing off against Bangladesh. India have won the toss, decided to have a bat first, and currently as we speak at the Korogi Sports Park, the duo of Smriti Mandhana and Shefali Verma is on the park, and Smriti Mandhana is just 7 runs away from becoming the highest ever run getter in women's T20 internationals. Will she be able to break that record? We will know soon. Earlier in the day, Sri Lanka defeated Pakistan and made it to the final. So if India wins this, they will be facing off against Sri Lanka in the finale.
1: बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां हमारी महिला जो टीम है उन्होंने एक शानदार आगाज दिया है। दर्पण ने बताया क्रिकेट के बारे में और यहां पर हम टीटी की बात कर रहे हैं, जहां पर विमेंस टीम इवेंट में ग्रुप एफ के मुकाबले में इन तीनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। श्रीजा अकुला, दिया चिताले, यशस्वनी घोरपड़े ने यहां पर शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में जो आगाज दिया है टेबल टेनिस में, देखना होगा कि आगे का रास्ता कैसा रहता है।
2: Right, and the men's team is also in action in table tennis. India is facing off the same opponent, Indonesia, in the men's team event. Satyan Nanasekaran got us off to a great start by winning the first match, and then in a seesaw battle, Manav Thakkar was pushed to the limit, but he came out on the top as well. He won his match as well, and currently Manush Shah is playing in the third match. 5 matches in total in one fixture, and if you win 3 of them, you win the entire fixture. The women won 3 straight. The men have won 2. If they win this one, they will be winning this fixture as well.
1: बिल्कुल, अब बात होगी हॉकी की, क्योंकि हॉकी में एक अच्छी खबर तो हमारे पास सुबह आ चुकी है, जहां पर भारतीय महिला टीम ने एक शानदार तरीके से आगाज दिया, लेकिन दूसरा मुकाबला भी होना बाकी है, जहां बात होगी पुरुषों की। और पुरुषों के मुकाबले में ये पूल ए का मुकाबला है, जहां आज ये दोनों टीमें इंडोनेशिया के साथ मुकाबला है, 11:30 आज मैदान पर होंगी।
2: राइट, रिमेम्बर इन द हॉकी इवेंट एंड क्वालिफिकेशन फॉर द 2028 LA ओलंपिक्स इज at stake, so we want both our men's team and the women's team to win gold. The women's team defeated Uzbekistan earlier today by 19-0, where Deepika herself scored 8 goals, and Savita Punya, our goalkeeper, had not much to do. She was playing her 320th international match, and with that she has now become along with Vandana Kataria the joint most capped player for India in women's hockey. Anyhow, talking about India's badminton campaign. Now that gets underway at 11:30 today, where India are going to face off against Kazakhstan, and the women's team event is what we are talking about. So that would be in action. Plenty in store, and we will be giving you updates at regular intervals.
1: तो हमारे साथ इन अपडेट के लिए बने रहिए, और अगले अपडेट के साथ मैं और दर्पण आपके साथ फिर से जुड़ेंगे ठीक 12:30 बजे.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

आज के दिन। चलिए देख लेते हैं इतिहास के पन्नों को पलटकर के आज का दिन क्यों खास है और क्यों खास होना चाहिए, इसे क्यों हमें याद रखना होगा आज के दिन को। 20 सितंबर 1664 में मैरीलैंड ने अंग्रेज महिलाओं और अश्वेत पुरुषों के बीच अंतरजातीय विवाह को रोकने के लिए पहला अंतरजातीय विवाह विरोधी कानून पारित किया था आज के ही दिन। 1839 में नीदरलैंड्स में पहली रेल मार्ग का उद्घाटन हुआ था जिसने एम्स्टर्डम को हार्लम से जोड़ा था। 1850 में वॉशिंगटन डीसी में दास व्यापार समाप्त कर दिया गया, लेकिन दास प्रथा जारी रखने की अनुमति दी गई। व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन। 1904 में ऑरविल और विल्बर राइट ने, यानी कि राइट ब्रदर्स ने, अपने फ्लायर 2 में एक वृत्ताकार यानी सर्क्यूलर उड़ान भरी थी। 1932 में महात्मा गांधी ने हिंदू अछूतों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की थी आज के ही दिन। 1954 में पहला फोरट्रान कंप्यूटर प्रोग्राम, जो व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी, IBM 704 कंप्यूटर पर चला। 1962 में स्वतंत्रता के बाद हुए पहले चुनाव में अहमद बेन बेला अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने थे आज के ही दिन। 1969 में लंदन में एक व्यावसायिक बैठक के दौरान जॉन लेनन ने पॉल और रिंगो को निजी तौर पर बताया कि वो द बीटल्स छोड़ रहे हैं। 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी दोनों ने एकीकरण योजना की पुष्टि की थी आज यानी 20 सितंबर को। 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी न पूछो न बताओ नीति समाप्त कर दी, जिससे समलैंगिक पुरुषों और महिलाओं को सशस्त्र बलों में खुले तौर पर सेवा करने की अनुमति मिल गई। 2019 में 185 देशों के छात्रों ने जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसका समापन ग्रेटा थुनबर्ग के नेतृत्व में मैनहट्टन में एक रैली के साथ हुआ। 2021 मेरी शेली के 1818 के उपन्यास फ्रैंकेनस्टाइन का पहला संस्करण $1.17 मिलियन में बिका, जो एक महिला द्वारा मुद्रित कृति के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करता है। 2023 जाम्बिया में कोलंबो फॉल्स के पास लकड़ी से मानव निर्माण के सबसे पुराने ज्ञात साक्ष्य की खोज की गई, जो लगभग आधा मिलियन वर्ष पुराना है। पिछला ज्ञात उदाहरण 9000 साल पुराना था। आज के ही दिन 1934 में रोम इटली में पैदा हुई थी अभिनेत्री सोफिया लोरेन। और साथ ही आप में से जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन सबको हमारी ओर से

0: का, अब नुस्खा ही कहिए या फिर ऐसी बात जो आम तौर पर जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए, टोटका ही कहिए। आमतौर पर लोग सामान्य लहसुन का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या कभी अपने पहाड़ी लहसुन का इस्तेमाल किया है? ये बाजार में बिकने वाले लहसुन से काफी अलग होता है। इसे कश्मीरी या हिमालयी लहसुन भी कहते हैं। पीले मटर जैसे दाने में बंद इस लहसुन का स्वाद तीखा होता है, लेकिन ये औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसकी कई विशेषताएं हैं जो सेहत के लिए अच्छी मानी गई है। अपनी गुणवत्ता के कारण पहाड़ी लहसुन महंगा बिकता है। इसे कच्चा खाएं या पकाकर, यह हर लिहाज से स्वास्थ्यवर्धक है। खास बात यह है कि इस लहसुन से जहां कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, वहीं ये हृदय को स्वस्थ भी रखता है। इससे शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर भी काबू में रहता है। पहाड़ी लहसुन का आयुर्वेद में तो महत्व है ही, वही पारंपरिक चिकित्सा में इसे देसी नुस्खे के रूप में भी आजमाया जाता रहा है। सामान्य तौर पर इस लहसुन का इस्तेमाल रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने और पाचन मजबूत करने के लिए किया जाता रहा है। ये स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को सहजता से दूर कर देता है। यूं तीखे स्वाद के कारण इसे भोजन बनाते समय भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। दरअसल इसमें सल्फर युक्त विशेष यौगिक एलिसिन व्यक्ति को रोगाणुओं से मुक्त कर देता है। इसमें खास तरह के तत्व फ्लोवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स तनाव को कम करते हैं। इससे रक्तचाप भी काबू में रहता है। सूजन और जोड़ों के दर्द में निजात पाने के लिए पहाड़ी लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद सल्फर यौगिक यकृत को भी साफ करता है। इससे विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। पहाड़ी लहसुन का अगर नियमित सेवन किया जाए तो कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। यहां तक कि कैंसर जैसे गंभीर रोग के जोखिम को भी कम करने में इससे मदद मिल सकती है। दरअसल इस लहसुन में एक खास यौगिक होता है जो कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में मदद करता है। पहाड़ी लहसुन मधुमेह को भी काबू में रखने के लिए सहायक साबित हुआ है। दरअसल इसमें मौजूद एलिसिन, विटामिन बी और थायमिन के साथ मिलकर पैनक्रियास को इंसुलिन उत्पन्न करने के लिए सक्रिय करता है। इससे शरीर को मधुमेह से लड़ने में मदद मिलती है। पहाड़ी लहसुन का उपयोग करने से खांसी और सामान्य सर्दी जुकाम भी काबू में रहता है। अब ऐसी बातें सुनकर लग रहा है कि ये जैसे कोई एकदम कोई यूनिक चीज हो जिससे दुनिया में हर समस्या का समाधान मिल जाए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सबके लिए फायदेमंद ही हो ये। जरूरी ये है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वो ही करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, अच्छा हो।
1: एक चुटकी नुस्खे,

0: एक जरूरी सूचना 138B डाक एवं पेंशन अदालत। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 12:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332120250, 0332120612, 0332120500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों या ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
1: कोलकाता कल्चर।
0: जल्दी से देख लेते हैं आज शहर कोलकाता में क्या क्या हो रहा है। बृष्टि शहर सूर्य राड्डा सुदीप पीलू दीप राज ओ पूरब शाम के 6 बजे से जैमिंग डायरीज नाम से एक कार्यक्रम शहर के ही एक कैफे में आज शाम 5 बजे से, हेरोइन स्टोरी टेलिंग इवेंट आज शाम 7 बजे से एक ऑडिटोरियम में, शाको मनोमय भट्टाचार्य ब्रतोती बंदोपाध्याय शहर के ही एक ऑडिटोरियम में शाम 6:30 से, इंडिया टूर ऑफ अनुभव सिंह बस्सी आज शाम से शुरू होकर 25 तारीख तक ये चलता रहेगा। तो ये थे कुछ कार्यक्रम जिनमें आप आज शाम शामिल हो सकते हैं।
1: कोलकाता कल्चर।
0: तो चलिए देखते 10:59:42 समय है मुझे यानी देवजानी को आप इजाजत दे कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप से। दोबारा जरूर आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन एफएम रेनबो पर फिलहाल 100.1 FM गोल्ड ट्यून करना ना भूलेगा। 11:10 पे मैं हाजिर हो जाऊंगी।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: नमस्कार, 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर मैं हूं कविता
2: एंड आई एम दर्पंती किया।
1: आईची नागोया से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहां भारत ने अब तक ऑफिशियली 2 मेडल शूटिंग में अर्जित कर लिए हैं। लेकिन हमने जैसा आपको दिन की पहली अपडेट में बताया था कि हमारी एमएमए खिलाड़ी सुचिका तारियाल ने भी कम से कम ब्रॉन्ज मेडल कंफर्म कर लिया है सेमीफाइनल में पहुँच कर।
2: राइट, सो लेट्स टेक यू फर्स्ट टू द शूटिंग रेंज वेयर इंडिया हैव कंफर्म्ड 2 सिल्वर।

0: been indeed a day of dominance.
1: जहाँ डोमिनेंस की बात हो रही है वहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर हॉकी की, जहाँ शुरुआत हुई है धमाके के साथ। जी हाँ, भारतीय महिला खिलाड़ियों ने उज्बेकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 19-0 से करारी शिकस्त दे दी। दूसरी तरफ पुरुषों ने भी इंडोनेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर रखते हुए मैच 13-1 से अपने नाम करके जीत के साथ एक शानदार आगाज किया। मैच में अच्छी बात ये रही कि पूरी ही टीम का योगदान देखने को मिला, जहां 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल दागे। दिलप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 4 गोल किए।
0: So they have kicked off their campaign on the winning note, as was expected. Remember, India wants a gold medal in the Asian Games in hockey, not only because that gold medal holds a lot of pride, but also because it can be a ticket to the LA Olympics. If you win a gold medal here, you qualify directly for the 2028 Olympics. Back to cricket then. India versus Bangladesh, the semi-final match has just come to an end and India were dominant. They batted first, scored 195 for 4, in which the superstar was Shaif Ali Verma. The swashbuckling opener scored 100 not out of 49 balls, her first T20 international century, and along with that she broke a few records. She scored more than 100 sixes now in T20 international cricket, and the same record was also broken by Smriti Mandhana at the other end, who scored 37 of 19 balls, and with that Smriti Mandhana is now the all-time leading run getter in women's T20Is. So India scored 195 and they bundled out Bangladesh for 81. A silver medal is all but confirmed. However, India will be playing for gold in the final against Sri Lanka.
1: Ji haan, batate hue bahut khushi ho rahi hai ki din jo hai wo mahilaon ki shandar performance ke saath jari hai. Ji haan, badminton court par bhi dabdaba lagatar mahilaon ki team का यहां पर देखने को मिल रहा है। विमेंस टीम के पहले मुकाबले में भारत ने 3-0 से जीत हासिल करके अपने आप को टीम इवेंट में यहां पर जीत के साथ एक स्टार्ट दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस टीम इवेंट में 5 मैच खेले जाते हैं, जिनमें से 3 में जीत अर्जित करनी होती है। मुकाबला जीतने के लिए भारत को पीवी सिंधु ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलवाई। मैच में दबदबा दिखाते हुए यहां पर दोनों ही उनके युवा शटलर उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने भी अपना अपना मुकाबला जीत ही लिया। इसी के साथ ये टीम यहां पर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, अब जहां टीम के सामने होगा Japan.
0: Right, into the quarterfinals. The same rules are followed in table tennis as well in the team event, where in every tie or every fixture, 5 matches are played. And the Indian women's team started off on a winning note earlier this morning by defeating Indonesia 3-0. The men's team repeated that and they also defeated Indonesia by 3-0. However, now the women's team is playing its second tie, where Singapore is giving them a little bit of a run for their money. And despite that, Team India is still in the lead. Yashaswini Ghorpade has won her first match, and currently Srija Akula is in a tussle with Ming Loy of Singapore. Currently, the match is tied at 2-2. We are going into the next set. So it will be a fascinating watch in table tennis.
1: कहानी खत्म नहीं होती है। अब से थोड़ी देर बाद तैराकी में हमारे पुरुषों की बैकस्ट्रोक स्पर्धा में भारतीय तैराक ऋषभ दास फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। सो लेट्स होप फॉर इंडिया।
0: Right, so we will hope that another medal is confirmed in swimming. We will be back with another update at 2:30 PM and hopefully we will have the news of another medal.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: Bangladesh riding on Shefali Verma's record-breaking century and are now assured of at least a silver. However, we will hope that in the final, when they lock horns with Sri Lanka, whom they defeated a few days back in the Women's Asia Cup final, they will again retain their gold medal, retain their crown of the Asian Games as well.
1: क्रिकेट के साथ ही जीत का सिलसिला बढ़ाया है आगे हॉकी के खिलाड़ियों ने. जी हाँ, हॉकी में भी दोनों ही टीमों के रिजल्ट हम सबके सामने आ चुके हैं. पहले मुकाबला खेला गया महिलाओं का, जहां पर भारतीय टीम ने उज़्बेकिस्तान को शानदार तरीके से 19-0 से हरा दिया. इसी के पीछे पीछे भारतीय पुरुषों की भी मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से हरा दिया. और बात करें अगर इसी के साथ स्विमिंग की, जिसका मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है, यानी 2:40 पर ये मुकाबला होगा. तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा पर भारतीय तैराक एक बार फिर से मेडल के लिए दावेदारी पेश करते नजर आएंगे. ऋषभ दास यहां पर होंगे हमारे सामने. और आपको ये भी बता दें कि जो सारी प्रतिस्पर्धाएं हैं नागोया शहर और आईची प्रीफेक्चर में हो रही है, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रही हैं.
0: राइट, सो वी होप दैट ऋषभ दास, हु विल बी फीचरिंग इन दैट फाइनल, विल बी एबल टू गेट अ मेडल एज वेल. हाउएवर, फ्रॉम द स्विमिंग सेंटर इन टोक्यो, वी मूव आवर attention to the Sky Hall in Nagoya, where the table tennis event is happening. As we told you in our last update, that Indian women's team had won their opening contest against Indonesia, and the men's team also started off on a winning note by defeating Indonesia. However, in their second tie, Singapore is giving the Indian women's team a run for their money. In each tie, there are 5 matches played, and you have to win 3 of them in order to win the tie and take the points out of it. In the first match in this particular tie against Singapore, Yashaswini Ghorpade got India off to a good start. However, after that, Shrija Akula has lost her match, and Dia Chitale has also lost her match. So now in the remaining 2 matches, India need to make it or break it, otherwise they will lose this fixture. On the other hand, in the badminton court, there was not much of competition. India secured a comfortable victory against Kazakhstan, riding on good performances from Unnati Hooda, Tanvi Sharma and PV Sindhu. And based on that, now they are into the quarterfinals, where they will be facing Japan.
1: बात करते हैं वुशू की, जिसमें अब से कुछ देर बाद भारत के 2 खिलाड़ी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे. 52 किलोग्राम में अपर्णा सांडा इवेंट में ईरान की सोगंद सिंह काई चेतन से भिड़ेंगी. वहीं पुरुष 75 किलो में विक्रांत बालियान का मुकाबला ईरान के सोहेल मौसवी से होगा. ये भी सांडा इवेंट का ही मैच है. सांडा इवेंट सांशो की कहा जाता है वुशू मार्शल आर्ट का फुल कॉन्टेक्ट कॉम्पिटिशन है, जिसे फाइटिंग इवेंट माना जाता है. वुशू की उत्पत्ति चीन से हुई है. ये चीनी मार्शल आर्ट है, जिसे दुनिया भर में कुंग फू के नाम से भी जाना जाता है.
0: सो वील कीप आवर आईज ऑन दैट एंड वी विल गिव यू द अपडेट एज सून एज पॉसिबल एज एंड व्हेन इंडिया विन द मेडल्स. फॉर नाउ दिस इज दर्पण एंड कविता साइनिंग ऑफ विद द मैसेज दैट वी विल मीट अगेन एट 3:30 PM विद द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द 20th एशियन गेम्स.

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: बजकर 8 मिनट और 5 सेकंड 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक के सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके अपने 3 का तड़का में। 3 बजकर 8 मिनट और मैं रहूंगी आपके साथ पूरे 4 बजे तक। आज सबसे पहले जो गीत आपको मैंने सुनवाया वो था यशिता शर्मा, मनीष, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। इस गीत को मैंने फिल्म दिल धड़कने दो से चुना। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के पहले परियोजना प्रस्तुति, एफएम रेनबो परियोजना प्रस्तुति।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
0: आज मैं आप सभी के सामने भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और सशक्तिकरण से जुड़ी योजना के बारे में बताने जा रही हूं। इसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। साथियों, किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग आत्मनिर्भर हो। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को जब आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं तब देश की आर्थिक नींव और मजबूत होती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस योजना का मुख्य उद्देश्य एएससी एएसटी वर्ग और एससी और एसटी वर्ग और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। ग्रीन फील्ड परियोजना का अर्थ है ऐसा नया उद्यम जो पहली बार शुरू किया जा रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं या व्यापार से जुड़ा हो। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है। हर बैंक शाखा को कम से कम 1 महिला उद्यमी और 1 एससी या एसटी उद्यमी की को ऋण देना अनिवार्य किया गया है। इस ऋण में परियोजना लागत का अधिकतम 75% तक वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि लाभार्थी को स्वयं लगानी होती है जिसे मार्जिन मनी कहा जाता है। ऋण की अदायगी की अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक होती है और इसमें कार्यशील पूंजी की भी सुविधा मिलती है। स्टैंड अप इंडिया योजना की एक खास बात ये भी है कि इसमें केवल ऋण ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है। इसके लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया पोर्टल और टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था की है ताकि उद्यमी सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस योजना में लाखों महिलाएं और युवा उद्यमी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, स्टैंड अप इंडिया योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि ये एक आंदोलन है जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर

0: निर्भरता और सम्मान के साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप या आपके आसपास कोई महिला SC या ST वर्ग से संबंधित व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हो तो उसे स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में अवश्य जानकारी दे।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
0: और अब मोनाली ठाकुर की आवाज में दम लगा के हईशा से सुनते हैं ये अगला गीत। इसे वरुण ग्रोवर ने लिखा और अनु मलिक ने कंपोज किया।

3:18 और मैं आपकी आरजे पलक लेकर आई हूं आपके लिए आपका कार्यक्रम तीन का तड़का ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और चलिए अब एक और बेहतरीन गीत आपके सामने पेश करती हूं, सोनू निगम परिणीति चोपड़ा की आवाज में। ये है फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से, कौसर मुनिर ने से लिखा है और सचिन जिगर ने कंपोज किया।

आज मोबाइल पे यूं ही कुछ मैसेजेस को स्क्रॉल करते समय कुछ बहुत बेहतरीन पढ़ा मैंने, जो आपके साथ साझा करने जा रही हूं अभी। और ये जो सच है, ये कड़वा सच है, वो ये कि हम अक्सर उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। अक्सर अपने माँ बाप को, क्योंकि हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपने स्पाउसेस को, क्योंकि उन्हें भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, समटाइम्स अपने फ्रेंड्स को भी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, अक्सर हमारी औलाद, हमारे बच्चे। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। और वो यदि आप नहीं सोच पा रहे तो मैं आपको झटपट से बता दूं, जल्दी से बता दूं, वो है ये समाज जो सिर्फ तब है जब तक हम हैं, जब तक हम खुश हैं। जब हम दुखी होते हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, अक्सर ये देखा गया है, हमने जाना है, माना है, और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि वो फिर कहीं आसपास भी हमारे नहीं होते। ऐसे बहुत कुछ अच्छा लगा तो आपके साथ शेयर किया मैंने। और बता दूं कि 3:30 पर दिल्ली केंद्र से 5 के लिए हम सुनेंगे पीरियोडिक FM अपडेट्स ऑन द 20th एशियन गेम्स 2026। फिलहाल एक और बेहतरीन गीत, और ये बेहतरीन गीत पेश है आपके लिए फाहिम अब्दुल्ला की आवाज़ में, सैयारा फिल्म का टाइटल ट्रैक, इरशाद कामिल की आवाज़ में, तनिष्क बख्शी, फाहिम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी ने इसे कंपोज किया। और इस गीत के बाद सीधा दिल्ली केंद्र से पीरियोडिक FM अपडेट्स ऑन द 20th एशियन गेम्स 2026। फिलहाल ये गीत लेकर आई हूं मैं, आपकी आरजे पलक, कार्यक्रम 3 का तड़का, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरू 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरू 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: जापान के आईची नागोया में खेले जा रहे 20वें एशियन खेल की लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता
3: एंड आई एम दर्पण किया।
2: अब तक हमने आपको बताया आज के दिन में जापान में हो रहे एशियन गेम्स में शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन में भारत का दबदबा रहा, लेकिन टेबल टेनिस के टेबल पर भी इस वक्त चल रहा है एक कांटे का मुकाबला।
3: राइट, इट इज द वुमेन्स टीम इवेंट वेयर इंडिया वन देयर अर्लियर फिक्स्चर अगेंस्ट इंडोनेशिया। हाउएवर, सिंगापुर इज कॉन्स्टेंटली गिविंग द इंडियन टीम अ रन फॉर देयर मनी एंड लेट मी टेल यू दैट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, इन अ particular fixture or a particular tie, 5 matches happened back to back, and there India started off on a winning note. However, then Singapore came roaring back to win the next two. India won the fourth one, and hence we went into the final match, which was supposed to be the deciding match. And that deciding match between Singapore's Ming Loy and India's Yashaswini Ghorpade has also gone into the final set. And just as we speak, Yashaswini Ghorpade has scored the winning point. It looks like India have won this particular match. So good news coming your way. Both matches, both opening matches have been won by the Indian team. The Indian women's team are off to a winning start. And just as we say that, 25-year-old Manush Shah is gearing up to face an opponent from Iran in the men's team event. This is the second fixture for the men's team as well. They featured against Indonesia earlier today and they won it 3-0. Will they be able to defeat Iran as well? We will find out soon.
2: जी हाँ, लेकिन जहाँ कुछ उम्मीदें अभी बरकरार हैं, ऐसे में आज एक मेडल का मुकाबला होना था जिस पर फिर चुका है पानी। मैं बात कर रही हूँ पुरुषों के 100 मीटर बैकस्ट्रोक में ऋषभ दास का जो नंबर था वो छठे पायदान पर रहे 54.77 के अंकों के साथ, और छठे पायदान पर रहकर पदक की दौड़ से बाहर होकर इन्होंने अपना सपना अधूरा ही छोड़ दिया। इसी के साथ अब बात करते हैं वुशु की, जिसमें अब से कुछ ही देर में खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले में चुनौती पेश करेंगे। 52 किलोग्राम में अपर्णा सांडा इवेंट में ईरान की सौगंध सिकाई चेतन से भिड़ेंगी। वहीं पुरुषों में

0: किलोग्राम वर्ग में विक्रांत बालियान का मुकाबला ईरान के सोहेल मौसवी से होगा।
1: Yes, and we will keep you updated about these events as and when they happen. But in case you missed out on the earlier updates, let's give you a quick rundown of what has transpired in Japan today, starting with shooting.
0: शूटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले शूटिंग में आए हैं दो मेडल जो कि हमें मिले हैं 10 मीटर एयर राइफल विमेंस टीम में। ये जीते हैं हमारी तिकड़ी ने एला वनिल वला रिवन, सोनम मस्कर विदर्सा विनोद ने। वहीं इसी के इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में एला वनिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
1: Right, and in the hockey stadium also, India were the dominant force. The men's team started off their campaign with a 13-1 win over Indonesia. Meanwhile, the women were a step ahead. They defeated Uzbekistan by 19-0.
0: क्रिकेट की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने अपना कदम रख लिया है। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है और अब वो गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका से भिड़ेगी।
1: यस, शेफाली वर्मा स्कोर्ड अ सेंचुरी टुडे, 100 नॉट आउट ऑफ 49 बॉल्स। शी वाज द स्टार, कंप्लीटेड 100 सिक्सेस इन T20I क्रिकेट। सो डिड स्मृति मानधना, हु हैज नाउ आल्सो बिकम द ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर इन वुमेन्स T20I। सो टू मेडल्स कमिंग इन शूटिंग, वन इन द इंडिविजुअल इवेंट इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, वन इन द टीम इवेंट, एंड by the virtue of qualifying for the finals, the women's cricket team is also assured of a silver. Another athlete of ours is assured of at least a bronze, and that is Suchika Tarial in MMA in the 60 kilogram category. She defeated her Mongolian opponent in the quarterfinal and got herself into the semi-final. Meanwhile, in the badminton court, led by PV Sindhu, the Indian women's team in the team event also went off to a winning start. PV Sindhu won her match in straight sets, and so did Tanvi Sharma and Unnati Hooda. 3-0 against Kazakhstan, India into the quarterfinals in this event as well.
0: चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं मेडल टैली पर, जहां भारतीय टीम अभी 10वें पायदान पर ही काबिज है 2 सिल्वर मेडल के साथ, और पहले पायदान पर है चाइना की टीम।
1: Right, so those 2 silver medals for India. However, remember, 2 more are confirmed. They are not yet reflecting on the medals table. However, we hope that they get converted into gold. Still early days, still a lot of medals to be won, and we will keep you updated. You were listening to the live updates of the 20th Asian Games live on Akashvani.
2: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: बजकर 36 मिनट और 42 सेकंड, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं रहूंगी आपके साथ 4 बजे तक। और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले एक जरूरी सूचना आपके साथ साझा करना चाहती हूं, और यह है 138वीं डाक अदालत और पेंशन अदालत पर। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2026 को अपरांत 12:30 पे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 100

38वीं डाक अदालत और पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख और शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 सीआर एवेन्यू, कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए। और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से 30 सितंबर 2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तारीख और समय पर वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत और पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष 0332212050, 0332212061 या फिर 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन या फिर पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। और डाक और पेंशन अदालत में उत्तराधिकार से संबंधित विधिक मामलों और नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, ये आप याद रखें। और इसी के साथ ये ज़रूरी सूचना अब ख़त्म हुआ। 3:40 और अब हम 3 का तड़का में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक बेहतरीन गीत फिल्म तनु वेड्स मनु से।

3:46:58 is the time आप सुन रहे हैं तीन का तड़का अपनी आरजे पालक के साथ only on 107 FM रेनबो. और अब बाजीराव मस्तानी से गीत हो जाए शशि सुमन कुणाल पंडित पृथ्वी गंधर्वा और कनिका जोशी की आवाज़ में. इस फिल्म को इस गीत को कंपोज किया है संजय लीला भंसाली ने. चलिए सुनते हैं अलबेला साजन.

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

तनु वैद्य मनु रिटर्न से ज्योति नूरा को आपने सुना और 3:55 और 55 सेकंड आप सुन रहे हैं 3 का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ। और बस अब वक्त कुछ ही शेष बाकी है तो चलिए हो जाए एक और बेहतरीन गीत। और जाने से पहले दोस्तों, इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर वो उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है, इसलिए अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखे एंड स्वस्थ रहे, मस्त रहे, रहिए व्यस्त और सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक के। छोड़े जा रही हूँ मैं आपको अमित त्रिवेदी की आवाज़ के साथ। फिल्म ऊंचाई का ये गीत इरशाद कामिल ने इसे लिखा और अमित त्रिवेदी ने संगीतबद्ध किया। और 3 का तड़का में आपसे लेती हूँ इजाज़त, सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: एम दरपंती किया।
1: हमारी पिछली अपडेट में आपने सुना था टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जा रहे थे और अब हमारे पास है उस मैच का रिजल्ट।
0: राइट, सो ईरान प्रूव्ड टू बी अ टफ ओपोनेंट फॉर टीम इंडिया एंड इंडिया एंडेड अप द मेंस टीम वी आर टॉकिंग अबाउट। इट इज द मेंस टीम इवेंट वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर द इंडियन मेंस टीम हैड स्टार्टेड ऑफ ऑन द परफेक्ट नोट अर्ली इन द मॉर्निंग बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया बाय 3-0। हाउएवर अगेंस्ट ईरान दे लॉस्ट 3-0 व्हिच मींस दे लॉस्ट ऑल थ्री मैचेस, द फर्स्ट थ्री मैचेस, एंड देयरफॉर द मैच कुड नॉट गो ऑन फॉर एनी लॉन्गर। हरमीत देसाई, मानव ठक्कर एंड मानुष शाह फीचर्ड फॉर इंडिया बट ऑल थ्री ऑफ देम इनकर्ड लॉसेस। एंड ऑन द अदर हैंड द विमेन हैव वन बोथ देयर फिक्स्चर्स, फर्स्ट अगेंस्ट इंडोनेशिया, द सेकेंड वन अगेंस्ट सिंगापुर। नाउ टुमारो इट्स अ डबल हेडर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन टेबल टेनिस, फर्स्ट इन द मेन्स टीम इवेंट एंड देन इन द विमेन्स टीम इवेंट टू।
1: बात करते हैं वुशु में आज खेले गए सभी मुकाबलों की। पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह आज के दिन के भारतीय वुशु के तीनों मुकाबले भारत जीत नहीं पाया।
0: Right, so that is some bad news, but there's plenty of good to look at as well. As we have been telling you right since the morning that some of the performances today have been exemplary. Let's give you a quick rundown, beginning with shooting, where India has registered two silver medals today, both coming in the women's 10 meter air rifle. The first one in the team event, where the trio of Elavalin Vallarivan, Sonam Maskar and Vidarsha Vinod achieved 1898 points, surpassing what was the Asian Games record coming into this particular event. However, the Chinese trio turned out to be even better. They registered a world record by scoring 1904.2 points, and therefore India had to settle for a silver. But then in the individual event of the same competition, Elavalin proved to be amazing. She secured another silver medal. So two silvers for her, two silvers for India.
1: जी हाँ, और इसी के साथ मेडल की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट में सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और अपने लिए एक कांस्य पदक सुनिश्चित कर चुकी हैं। कल उनका मुकाबला सेमीफाइनल में होगा।
0: Right, and in cricket as well, another medal has been secured. It's currently not reflecting on the medals tally, but will reflect soon. Shefali Varma, the swashbuckling opener today, scored a century for the Indian women's team in the semi-final against Bangladesh. And riding on her performances, India defeated Bangladesh by 114 runs. Now they will face off against Sri Lanka for the gold medal.
1: हॉकी में भी बहुत शानदार खबर है, जहां महिला और पुरुष दोनों ने ही अपने मुकाबले जीतकर आगे की राह तय कर ली है। महिलाओं में मुकाबला हुआ 19-0 का, उज्बेकिस्तान को मिली हार, भारत को मिली जीत। वहीं पुरुषों में भारत ने जीता है इंडोनेशिया के खिलाफ मुकाबला, जहां 13-1 से मिली है भारत को जीत।
0: And for both the teams, there were multiple goal scorers, which is a heartening thing to see. Remember, we want both these teams to win gold medal, because winning a gold medal does not only mean that you become the kings of or the queens of Asia, but also you secure a qualification to the LA Olympics in 2028. Moving on to the badminton court, the Indians women's team was in action today. PV Sindhu got us off to a good start by defeating the Kazakhstan opponent in straight sets, and Tanvi Sharma and Unnati Hooda followed suits. Everybody won their matches in straight sets, and therefore the Indian team won the fixture and they have progressed to the quarterfinals, where Japan is waiting for them.
1: कहीं उम्मीदें जगी हैं तो कहीं उम्मीदों पर पानी फिरा है। भारत में पुरुषों के 100 मीटर बैकस्ट्रोक में तैराकी में भारत के ऋषभ दास छठे पायदान पर

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: यादों की बारात।
2: सात बजकर 32 मिनट और 30 सेकंड। 107 FM रेनबो दिल से दिल तक के सभी लिसनर्स का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके छायालोक में। छायालोक रहेगा आपके साथ पूरे 9 बजे तक, पर मैं रहूंगी आपके साथ 8 बजे तक, क्योंकि 8:02 से आपके साथ होगी आरजे रिंकू। और 8:02 में आप सुनेंगे न्यूज़ इन बंगाली। तो चलिए छायालोक में शुरू करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम। और सबसे पहले हो जाए एक बेहतरीन गीत। ये गीत आप सुनेंगे राशिद अली और वसुंधरा दास की आवाज़ में, फिल्म जाने तू या जाने ना से। इसे लिखा अब्बास टायरवाला ने और संगीतबद्ध किया AR रहमान ने।

और अब साधना सरगम और हरिहरन की आवाज में सुनिए ये अगला बेहतरीन गीत फिल्म लक्ष्य से। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

एक मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यू नो जानकारी दे रही है एक बात की, ये जो हम सब जानते हैं पर मानते नहीं। जिंदगी आबाद करने में, सार्थक करने में श्रम और साधना करनी पड़ती है। जिंदगी आबाद करने में, सार्थक करने में श्रम और साधना करनी पड़ती है, बर्बाद तो वो स्वयं स्वतः ही हो जाती है। इसलिए जरूर कुछ ना कुछ करते रहे, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि बेकार की चीज़ों में, सिर्फ स्क्रोलिंग करने में, सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना समय ना गवाए और कुछ फ्रूटफुल करें। बस ऐसे ही मन किया आपके साथ ये शेयर करने का तो मैंने किया। वैसे बता दूं कि स्टूडियो की घड़ी में टाइम हुआ है 7:45 और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक में छाया लोक अपनी आरजे पलक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और जगजीत सिंह की आवाज़ में जॉगर्स पार्क का सुनते हैं ये अगला गीत। जमीर काजमी ने इसे लिखा और ताबुन सूत्रधार ने इसे संगीतबद्ध किया।

7:54:20 आप सुन रहे हैं छायालोक अपनी आरजे पलक के साथ। और अभी जो गीत हमने सुना, बहुत ही खूबसूरत गीत, उसे लिखा प्रसन्न जोशी ने, संगीत से सजाया विशाल खुराना ने।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि छायालोक रहेगा आपके साथ 9 बजे तक, पर मैं आपकी आरजे पलक रहूंगी आपके साथ 8 बजे तक। और 8 बजने में अब कुछ ही देर, कुछ ही वक्त शेष है, इसलिए छोड़े जा रही हूं मैं आपको अब इस आखिरी गाने के साथ। और ये आखिरी गाना आप सुनेंगे नीति मोहन की आवाज़ में, मिस्टर एंड मिसेस माही से। इसे लिखा है बनी और सागर ने और संगीत बंद किया है हनी बानी ने। और दोस्तों, हम बहुत बार बहुत टेंशन लेते हैं, पर ये याद रखिए, वो यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। जी हाँ, उन पर विश्वास कीजिए, अपना काम कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रहिए व्यस्त। और वक्त को फिर कुछ वक्त देने का वक्त हो चला है, आपकी आरजे पलक के पलक झपकाने का समय हो गया। मुझे दीजिए इजाज़त, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक के। और अब सुनिए नीति मोहन की आवाज़ में ये अगला बेहतरीन गीत।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ रिंकू और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर हमारा कार्यक्रम छायालोक। वैसे दोस्तों, 8 बजे के बाद हमारा सेक्शन जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। आरजे पलक इससे पहले आपसे रूबरू हो रही थी और अब मैं 8 बजे से 9 बजे आपको यहाँ पर बदमस्त या फिर कहे तो पकाने के लिए आई हूँ। आप सुनेंगे मेरे साथ बेहतरीन गीतों का ये सफर एक घंटे का। आइए सुनते हैं, शुरू करते हैं अलीशा चिनाय और उदित नारायण की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म फूल और कांटे से।

जी हाँ दोस्तों, भी प्यार भरा माहौल और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर 6 लोग, वो भी रिंकू के साथ। दोस्तों गानों का माहौल और साथ में प्यार भरी हमारी बातें हो और एक शेर तो बनता ही है। कहते हैं कि तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही गीतों के साथ मैं और आप बने रहेंगे अभी अगले एक घंटे तक। आइए सुन लेते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में गाया जा रहा था, लेकिन आप तो जैसा जानते ही हैं, न जाने क्यों देखने के बाद भी, जी हाँ, हमारे गीतों को और हमारे वादों को इन गीतों के साथ एक ऐसी बातें बन गई है कि क्या कहूं। एक शेर है कि कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा नाम आता है, कब तक छुपाऊं अपने दिल की बात को, तेरी हर अदा पे हमें प्यार आता है। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर रिंकू के साथ छाए लोग, और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज में फिल्म साथी से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और ज्वाली मुखर्जी की आवाज में फिल्म साथी से ये गीत, और स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं हमारा 8:20। तो चलिए धीरे धीरे ही सही लेकिन प्यार का सिलसिला तो जारी हो ही रहा है। आइए आगे के गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और एस बी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, उम्र गुजर रही है मगर सफर अभी बाकी है। जो टूट कर बिखरा हूं तो उसका असर अभी बाकी है। आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसबी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये गीत फिल्म 100 डेज से। वैसे ये फिल्म काफी अच्छी और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी उस समय के हिसाब से। आइए हम सुनते हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति जी को फिल्म माशूक से। आइए सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म मासूक से आप सुन रहे थे। वैसे स्टूड की घड़ी में 8:00 हो चुके हैं अभी इस वक्त 33 मिनट, और शो चल रहा है लगातार। कैसे लग रहा है आपको गीत? वैसे ये गीतों का सफर तो यूं ही है। वैसे दुश्मनों से न सगे भाई से हम घबराते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो तो सच्चाई से ही घबराते हैं। आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, कोई दिखा के रोए तो कोई छुपा के रोए, हमें रुलाने वाले हमें रुला के रोए। वैसे मरने का मजा तो तब है गालिब जब कातिल भी जनाजे पर आकर रोए। आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन से ये गीत, और अभी पेशे खिदमत है आपके लिए कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, बर्फ का वो टुकड़ा, शरीफ क्या हुआ, वो तो बदनाम हो गया। बर्फ में क्या गिरा वो बदनाम हो गया, लेकिन देता जब तक अपनी सफाई, धीरे धीरे खुद ही शराब हो गया। अब सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत। और धीरे धीरे वक्त का जो पहिया है वो चलता ही जा रहा है। 8:47, 48 होते ही जा रहे हैं। चलिए उदित नारायण और अलका याग्निक मोहम्मद अजीज के साथ ये गीत बजा देती हूँ, क्योंकि जरूरी है गीतों का और समय का एक साथ बनना। आइए सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप अलका याग्निक कुमार सानू के साथ उदित नारायण, अलका याग्निक मोहम्मद अजीज और साथ में थी हमारी साधना सरगम की आवाज में सुन रहे थे ये गीत। वैसे स्टूडियो की घड़ी में 8:54 हो चुके हैं। छोड़ जाती हूँ आपको इस दिल और जिगर के साथ कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज की ये संगीत फिल्म क्रिमिनल के गीतों के साथ। इसी के साथ रिंकू को इजाजत दीजिए और आप सुनते रहिए ये गीत। तब तक के लिए नमस्कार, जब तक हम आना जाए फिर वापस आपसे मिल लें।

कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: Vani, Akashvani.
1: And here is the update for today for the 20th of September, the Asian Games 2026.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: नमस्कार, खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। एक तरफ जापान की धरती और आईची नगोया का खेल मैदान है, तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आईची नगोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
4: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
3: तो अब

0: आज की सुर्खियां। भारत ने शूटिंग में दो सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलेवेनिल वलरिवन रिवीमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलेवेनिल सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा। सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज। अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता। अब जापान से अगला मुकाबला।
1: वक्त बदल रहा है और खेल भी। इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। एमएमए में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा। आईटी नागोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत की 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में एमएमए में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है। इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
0: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
2: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्सा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलिन ने 633.5 तो विदर्सा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलिन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गईं। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावनिल वलारिवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
3: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
0: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया। बता रही हैं अमीषा।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी। जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लाल रमसियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकेंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।
0: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 के करारी शिकस्त दी। पहले मैच में शिजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। शिजा ने यह मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डनेजर को पांव जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में शिजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में शिजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी पांचवें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8, 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला पांचवें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एकतरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीशा।
1: 20वें एशियन गेम्स आईजी नगोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7, 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था। और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कंफर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
0: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेकबॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए। परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
4: डेब्यू हुए टेकबॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेकबॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमराद बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहां जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहां मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला, और इस तरह से एशियन गेम्स में टेकबॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेकबॉल की पहचान जरूर बन गई।
0: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है, बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल 5वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में 6ठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वो ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ 2-2 हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमिशा की रिपोर्ट।
1: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
0: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही हैं कविता।
4: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा, भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई, जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए, जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की

0: 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंद सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
1: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपेक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। शॉप टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी। इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सू महिला चेंग क्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारू का भवतेक सिंह गिल और महराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रायजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट 2 में ऋषभ दास और श्री हरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्रीस्टाइल के हीट 2 में आकाश मणि उतरेंगे। हीट 4 में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट 1 में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले के हीट 2 में वेदांत माधवन दक्षिण शशि कुमार अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। MMA के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ 2-2 हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसिरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
2: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीत कर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है जिन्होंने 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
1: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिशा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन। सात सुरे सारा दिन। তুমি শুনছ নস্টালজিক 90s, নস্টালজিক 90s, only on 107 FM Rainbow. নস্টালজিক 90s, নস্টালজিক 90s.
4: হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা নস্টালজিক 90s এই আছি, অমরজিৎ আর অরিজিৎ আছে, আর আমরা যেখানে মাঝখানে একটি 20 মিনিট, তুমি ভাবছো তো এটা দুজনে কোথায় চলে গেল? দুজনে কোথাও চলে যায়নি। হ্যাঁ, দুজনে যেটা গেছিল মানে একটু শুনতে গেছিল 20th edition অফ এশিয়ান গেমস 2026 এর একটা সারাদিনে আজ কি ঘটেছে তার একটা সামারি তোমাদের সামনে আমরা তুলে ধরলাম। আর এরপর আরও একবার এই 20 মিনিটে যদি ভুলে গিয়ে থাকো, তাই তোমার জন্য গেমিং জোনটা আরও একবার দিয়ে দিচ্ছি, সেই চেনা ক্লুটা।
5: 90s gaming zone, 90s gaming zone, 90s gaming zone.
4: নস্টালজিক 90s এর তোমার জন্য একটা গানের ইন্টারলুড পোর্শন রাখলাম। আইডেন্টিফাই করো আর পাঠিয়ে দাও আমাদের 9903605992 তে যে গানটার নাম।